0: 借多少钱？ आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी बात तो समा देना अंदर मन में, बाप दादा को देख करके समा देना। एक सांस शक्ति, दूसरी समाने की शक्ति, अगर ये दोनों विशेष
0: शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: ब्राह्मण परिवार का अर्थ है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है। परिवार के बीच परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी, ऐसा नहीं कि बाप मेरा मैं बाबा का सब कुछ हो गया। बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन ये भी निश्चय की विशेषता है, सारी बातों में निश्चय विजय आवश्यक। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। सिर्फ परिवार में ये स्मृति में रहे कि सब
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: इसी पर

Coba cek.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ज्ञान स्वरूप

स्वरूप

0: सीट पर सेट है तो श्रेष्ठ कर्म सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देंगे। सोचते हैं लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना योग युक्त राज सोचना अलग है, मनन करना अलग है, स्वरूप अनुभवी स्वरूप बनकर चलना अभी इसकी आवश्यकता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समापति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों समाप्त कर सदा समृद्ध बन समृद्ध बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं, समृद्ध बनाओ, समृद्ध बनो, समृद्ध बनाओ। व्यर्थ को समापत्ति दिवस बनाओ। हो सकता है जो समझते हैं कि व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुशनुमा खुशकिस्मत
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

Ready, great.

0: इसी टाइटल को सदा याद रखना। कोई पूछे आप कौन है तो यही कहना, दीवार पुरुषा रहती हूँ। ठीक है, सभी को मंजूर है, मंजूर है। अभी ढीला पुरुषार्थ नहीं चलेगा, समय आगे भाग रहा है, इसीलिए अभी तीव्र पुरुषार्थ बढ़ना ही है। समय की पुकार तीव्र पुरुषार्थ
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर हिम्मत नहीं भी हो तो हिम्मत रखना, हिम्मत की मदद जरूर मिलेगी। समझा? समझा? समझा?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जो भी निमित्त बने हुए हैं उन्हों को आजकल के वायुमंडल पर संतुष्ट रहना ही है, लेकिन संतुष्ट करना भी है। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं। आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है, इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवश होके कर लेते हैं। कुछ सिक्या, कुछ किमिया, कुछ रैम, कुछ आत्मक सने उसकी आवश्यकता है। वायुमंडल में मेजॉरिटी को बैलेंस रखना नहीं आता, बैलेंस से सिक्या भी हो फिर साथ साथ उनको हिम्मत भी दो। सिर्फ सिक्या से अभी सभी सिक्यक बन गए हैं, इसलिए सिक्या के साथ हिम्मत और सने दिल का बाहर का नहीं, लेकिन दिल का सने दोनों का बैलेंस रख करके देना। और ऐसे प्लान बनाओ ऐसा प्लान चलता रहे, जैसे समय पर समय पट्टियां चलाते हैं ना, वो तो चलाते ही हूँ, लेकिन छोटा मोटा प्रोग्राम ऐसे विधि निकालो जिससे चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बन। चाहे ना है लेकिन हिम्मत कम है, उसमें मिलके कोई ना कोई अरमास के लिए ऐसा वर्क निकालो जो सभी बिजी हो जाए उसमें, रिजल्ट आती रहे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कोई भी प्रमाण, चाहे सरेंडर है, चाहे सेवादारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देंगे। Yes।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा तो देखते हैं, जो भी अपन ने स्वेच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पण करते हैं, उन सभी समर्पण साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है। खाओ पियो प्रभु के को न खाओ, सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, ये क्या है, प्रभु के को नहीं तो गाते हैं। और दाल रोटी तो बाप दादा बंदा हुआ है देने के लिए। इस प्रकार का भोजन नहीं खिलाएगा, वो कभी कभी खिला देगा। वो बहुत अच्छा, चाहे ट्रस्टी बन के भी सेवा कर रही है। अगर ट्रस्टी है, सच्चे ट्रस्टी, मतलब के ट्रस्टी नहीं, सच्चे ट्रस्टी है, तो बाप दादा कभी भूखा नहीं रख सकता। दाल रोटी जरूर खिलाए, क्योंकि बाप दादा भूखा रहता है क्या? रहता है। जब बाप दादा भूखा नहीं रहता, सभी भोग लगाते हैं। आप सभी भोग लगाते हैं ना, चतुराई तो नहीं करते, एक मिट्टी खिलाओ बाकी भूल जाओ, नहीं। अगर ट्रस्टी है तो भी बाप दादा बंदा हुआ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ब्राह्मणों का काम क्या है? योग लगाना भी क्या है? मेहनत है क्या? योग का अर्थ है
4: जान बुझ के सहज से

0: मुश्किल में चली जाती हूँ। है मुश्किल नहीं, बहुत सहज, क्योंकि बाप जानती है कि आधा कलम मुश्किल की जीवन व्यतीत की है, इसलिए इस समय सहज कोई है मुश्किल वाला। आप पीछे वाले मुश्किल लगता है, कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, ब्रह्मांड जीवन मुश्किल नहीं है। ब्रह्मांड के बजाय यात्री बन जाते हो तो यात्री का काम ही होता है लड़ना, झगड़ना, वो तो मुश्किल ही होगा ना। युद्ध करना तो मुश्किल होता है, मौज मनाना सहज होता है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Wow.

स्वरूप हो। सच्ची सेवादारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं। एक होता है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से मेरा नाम आ जाएगा, मेरा फोटो आ जाएगा अखबार में, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। कई साधन ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मण की बहुत आगे रखेंगे पूछेंगे। ये सब भाव स्वार्थी सेवा जो सच्चा सेवादारी है। आजकल के हिसाब से शिविरों की स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन इस समय के प्रत्यक्षता के हिसाब से सेवा आपके पास आएगी। आप सेवा के बिचारे नहीं, आपके पास सेवा को तो जन के आएगी। सेवा

0: अपने चेहरे से, अपने चलन से सेवक। आपका चेहरा
1: सुख।

suave.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाहर के लिए साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश करना ये भी अपने को धोखा देना है। बाप दादा देखते हैं, कभी कभी बच्चे अपने
3: रिजल्ट निकली, लेकिन
2: में भी फाउंडेशन पवित्रता, स्वच्छ, साफ और कोई भी भाव मिक्स नहीं। भाव में भी पवित्रता, भावना में भी पवित्रता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अमृत वेले रोज़

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी अभी आज के दिन चेक करो, मैं कौन, मैं फ्रिस्ता, यही सभी चेहरा और चलन बाप के सामने, विश्व के सामने दिखाना है। तो सभी बाप दादा के इस मुबारक को मैं कौन, बोलो करने के बाद फिर से याद करना मैं कौन, मैं फरिश्ता। तो फरिश्ता हूँ और फरिश्ता रूप से बाप समान संपन्न संपूर्ण बनूंगा ही, पक्का। सभी को पदम पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

must

0: सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अब छोटी छोटी बातों में टाइम नहीं लगा। जैसे देखो मक्खी आती है, मच्छर आता है, ठहरने देते हो, फौरन उड़ा देते कि बैठने देंगे। अच्छा मच्छर पले आओ, कोई भी समस्या क्या है? मच्छर और मक्खी तो है, फौरन भगाओ। उनों का काम है आना, माया आने का काम नहीं छोड़ती, लेकिन भ्रमण भगाने के काम में कभी कभी थोड़ी देरी लगा देते। माया भी सुन रही है, तो ये प्रतिज्ञा कर रही है, वो भी अपना तो आजमाइश करेगी ना। लेकिन आप तो माया जीतो ना, माया जीत तब तो जगत जीत बनेगी।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Artista.

0: ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ। ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਤ ਕਾ ਫਾਲੋ ਕੀਆ ਤੋ ਸਹਿਜ
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आज बाप दादा और पत्नी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित

Love.

0: हो सकता
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
2: जुदा ना थे ना जुदा रहेंगे, विदा ना होंगे ना विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है, पता है कौन सी आश है? वो जान तो गई हो, जान गए हो ना टीचर्स, जान गए हो ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो, बाप दादा पुरुषार्थ देख करके खुश कराते हैं। लेकिन एक आश ये कि पुरुषार्थ में अभी दीवार गति चाहिए, शरत है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही है और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। अभी विश्व की आत्माएं

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

याद करने वाले बच्चे। वाह, बाप के दिल में बच्चे और बच्चों के दिल में बाबा। सभी के मन में

Timmy.

sabe o que é. Just.

Pap Kajikit Papapapa Pachokabi Jikit Papapapa Arar Kisikil Me Fafa Kitchen स्पष्ट दिखाई दे रहे, कोई गीत के रूप में, कोई दिल की आवाज के रूप में, ये नैनो द्वारा अपने

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: श्रेष्ठ अपमान

Çok haklı.

वर्णन भी कर रही है।

Vodeče. One.

Baker.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अब दादा अभी क्या चाहते? हर बच्चा साथ साथ

Adiós.

कारण पुरुषार्थ में रहे। एक घंटे में अचानक अगर फाइनल पेपर का टाइम आ गया तो अंत मते सुखति वो एक घंटा का साधारण पुरुषार्थ कितना नुकसान।

चल कि समय अचल रहने का पुरुषार्थ देवर पुरुषार्थ ही कर सकता। साधारण पुरुषार्थ ही एवर रेडी बनने में समय लगा देना। और बाप दादा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होता है? फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क बन जाएंगे। बिंदी कितना सहज है और फुल स्टॉप कितना टेढ़ा बांका है। फुल स्टॉप हो जाए, कामा की मात्रा भी नहीं हो, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं हो, क्या करूं ये सोचने का भी समय नहीं मिले। कोई भी बच्चा सोच नहीं सकता कि इतना फास्ट पुरुषार्थ करना ही पेपर

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: खुशी से

0: शब्द खत्म कर दो।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Deutsch.

falta.

आप सुन रहे

0: रेडियो का संगम
1: आज बात दादा एक बात का सिमटती दिला रहा है कि कभी भी कोई भी शारीरिक बीमारी हो मन का तूफान हो तन में हलचल हो प्रवृत्ति में हलचल हो सेवा में भी हलचल होती है तो किसी भी हलचल में दिल शिकस्त कभी नहीं बड़ी दिल वाले बनो बाप की दिल कितनी है छोटी है जब बाप बड़ी दिल वाले छोटी दिल कर देते हैं बीमार हो के तो रोना शुरू कर दर्द हो गया तो दिल शिकस्त होना दवाई है जब हिसाब किताब आ गया तो हिसाब किताब आ गया ना तो दिल शिकस्त से बीमारी को मरा देते इसलिए हिम्मत वाले तो बाप भी मददगार बनेंगे ऐसे नहीं रो रहे हैं क्या करूं और फिर सोचो बाबा तो मदद ही है मदद उसको मिलती है जो हिम्मत पहले बच्चे की हिम्मत फिर बाप की मदद तो हिम्मत तो हार ली और सोचने लगते हो कि बाप की मदद तो मिली नहीं बाबा भी टाइम पर तो करते तो आते अक्षर याद नहीं करो बाबा मददगार है लेकिन किसका तो आधा भूल जाते हो और आधा याद करते हो कि बाबा भी पता नहीं महारथियों को ही करता है हमको तो करते ही नहीं हमको तो देखते ही नहीं पहले आप महारथी पीछे लेकिन दिल शिकस्त नहीं मन और मन में अगर कोई उलझन आ भी जाती है सीन समय पर निर्णय शक्ति से आप निर्णय शक्ति तब आ सकती है जब आपका मन पाप के तरफ हो। अगर अपने उलझन में हो तो कैसी भी हाल

जब आप लोग खुद कहते हो कि अति के बाद अंत होना है, कहते हो अति में जा रहा है और जाना है, परिवार में खिटखिट नहीं हो, ये नहीं होनी है, लेकिन आप ट्रस्ट

که سوچیں تو اور گڑبڑ ہوگی. پہلے بالکل نیارے ٹرسٹی بن جاؤ میرا.

सभी

0: சத்துவன். Our son shows father. Ka pat maka karo. Ka chang karo maka karo. Sabhi mat wale ho. Ye mat hai.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा के पास बच्चों के पत्र वाचित किया, बहुत अच्छी अच्छी हिम्मत किया कि हम आपस से अवश्य आएंगे। पौधों की अच्छी अच्छी उमंग की पत्र भी आई है और रोल्डियान में भी पौधों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का समाचार दिया। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहती है, बाप ने आप सबकी बीती को बिंदु लगा दिया, इसलिए बीती को सोचो नहीं। अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। 9 वर्ष के नए उमंग बहुत अच्छी अच्छी लिखी है, चाहे विदेश के बच्चों ने, चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा यही ऐसे बच्चों को वरदान देती है, इसी हिम्मत में निश्चय में नशे में अमर भव।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। बांधने वाले ने सिर्फ तरीका आपको सुना दिया कि ऐसे बांधो तो बन जाऊंगा, अच्छा ही।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा कि पुरुषार्थ भी सब बच्चे करते हैं, पुरुषार्थ की लगन भी है। अपने से क्या करेंगे।

रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

किसी बच्चे का दुख लिया।

समझते हो

Ishan Kononga Jakichra Wonga Wai Parishan Ongena Osama.

mengerti kosam nelong.

Jesus, mano, me tengo.

0: smrtimela. Sare kalabke. Fishesh.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले जाना अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से। ऐसे ही बाप दादा भी कहते हैं अभी भी, कैसे भी करके दुनिया के आगे महान रिश्ते रूप में प्रतिज्ञा करना ही है। तैयार हो ना, तैयार हो। बाप दादा ने सुनाया ना, कैसे भी कर इतना तो है ही, नहीं तो नहीं तो कैसे है।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Yeah.

Silence.

Sim.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय होती सेवादारी, सब में अच्छा, लेकिन जब आगे बढ़ती है तो ये ट्रायल लो पाता कि मैं इतना कुछ करता हूं, सब रूप से मदद करूं, धन से मन से धन से, और जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता।

0: did something.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: मात्रा

amigo.

Stagione mit der Hand.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Você.

सर्वशक्तियों का वरदान दिया, सर्व गुणों का खजाना दिया। खजाने को यूज करने से खजाना पड़ता है। खजाना है सबके पास है, बाप दादा ने देखा है, हर एक के स्टॉक को भी देखता है। Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आप लोग छोड़ने में तो जय भाई जय बहने, जो बीने में थे विशेष परिवार निर्विघ्न हो, उसके लिए कुछ टाइम फिक्स करो। अमृत वेले बाप को तो अपना टाइम देते हो और सेवा के व्रत भी करते हो, लेकिन खास परिवार के उन्नति के लिए और यज्ञ की कारोबार आगे आगे बढ़ते जाए, गवर्नमेंट द्वारा चाहे आपस में निर्विघ्न होता जाए, उसके लिए अमृत वेले 10 मिनट हर एक को देना। कोई भी सरकमटेंस वो सभी के योग से, सभी के समय देने से ठीक हो सकता है। सभी का एक ही संकल्प हो तभी हो।
2: यूथ विंग के लिए भी 1 करोड़ की एप्लीकेशन दिया हुआ है।
1: अच्छा है, बड़ी दिल रखो, आता जाएगा। सोचेंगे ना ये करूं मैं टाइम नहीं। आजकल समय अगर आप सभी शुभ भावना एक संकल्प रखो, होना ही है, हो सकता है। ये वरदान है, दिल बड़ी और कायदे सिर भी और दिल बड़ी भी, सिर्फ कायदा नहीं, दिल बड़ी रख करके फिर कायदा को। सभी का एक ही संकल्प हो, होना है, क्यों क्या नहीं होना ही। तो इस विधि से सब सहज होता है।
2: सोनीपत की भी 2 दिन के बाद डेट है कोर्ट में, भी हो जाए।
1: बस 10 मिनट आप सब निमित्त बने हुई आत्माओं को खास टाइम निर्विघ्न परिवार निर्विघ्न के प्रति 10 मिनट योग करना है, सहज हो जाएगा। अभी समय है

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: प्रदर्शन नहीं करना, अपने को ही देखना। कई बच्चे रोरियान करते हैं ना, कहते हैं बस ये थोड़ा सा उसको ठीक कर दो फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, ये थोड़ा बदली कर दो मैं भी बदली हो जाऊंगा, लेकिन न वो बदलेगा न आप बदलेंगे। स्वयं को बदलेंगे तो वो भी बदल जाएंगे। कोई भी आधार नहीं रखो, ये हो तो ये हो, मुझे करना ही है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

ça.

Yo quiero.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी बाप दादा ने चोटरल बताई थी, याद है? पांच पांच मिनट सारे दिन में एक बार ड्रिल करनी है, वो की है जिसने वो ड्रिल की है, वो हाथ उठाओ। की है, की है, दोनों ने हाथ उठाए। क्यों? तो थोड़ा टाइम की है, बहुत टाइम नहीं किया। तो अभी क्या करेंगे? कम से कम बताए, कम से कम बताए, आज कम से कम आठ बारी सारे दिन में कर सकते हो, कर सकते हो। तो इस वर्ष का होमवर्क, इस सीजन का होमवर्क दूसरी सीजन तक कम से कम आठ बारी ये ड्रिल जरूर करनी है, जरूर। देखेंगे नहीं, नहीं है, चाहे मिस हो जाए तो एक घंटे में अनेक बार करके पूरा करना, नींद पीछे करना, सोना पीछे, पहले ड्रिल आठ बारी पूरा करके पीछे सोना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने ये भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात को विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है जो ज्यादा बोलते हैं
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: क्या होगा से आ जाती। ऐसी दवाई तो जो बीमारी का नाम निशान नहीं हो, वो है मेडिटेशन।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: I should.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

see button too.

stick out of. Isliye ye ekagrata ka abhyas bahut.

0: Sim. इशारा
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: पाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं पाप का और पाप मेरा, ये निरंतर विजय
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी समय अनुसार जैसे कहाँ पानी के प्यासी ऐसे सॉरी। से भी ज्यादा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

क्योंकि वर्तमान समय से

Precisa, meu pai.

the ball, Kim.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सभी बच्चों को देख बाप दादा भी खुश होते हैं। बच्चे सब वाह वाह हो ना।

casa da vovó. Babsa da vovó.

इसमें अटेंशन देना है, इसके हाथ उठाओ। सुबह को उठते ही ये बाबा शब्द याद कर, पाप देख

का शब्द बोलना नहीं, ये सभा में हाथ उठाया ये बोलना नहीं,

以前啊，我爸爸कुछ भी बात हो जाए, आई और कही, आप क्यों उसको पकड़ लेते हो? कोई बात ठहरती नहीं है, चली जाती है, आप क्यों पकड़ लेते हो? तो कल से रोज़

0: उस बाबा शब्द याद रखना, अगर कभी मूड ऑफ होना बाबा शब्द।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी के मेजॉरिटी

Attention.

से सहयोग मिल सकता है। तो सुना क्या करना है अभी? मनसा सेवा को बढ़ाओ, Jeff.

Fish bakalyani ka swarup.

0: Ciao. Tedeschi.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा है सेवा की रुचि, सेवा का उमंग उत्साह अभी भी बच्चों में है। अच्छी सेवा के समाचार भी बाप दादा सुनते हैं, लेकिन बाप दादा तीव्र गति में आगे बढ़ने के लिए बच्चों को विशेष अटेंशन दिलाते हैं कि सिर्फ एक वाचा की सेवा नहीं, सेवा करते हो तो एक ही समय पर तीन सेवाएं इकट्ठी करो। मनसा द्वारा सकाश दो, वाचा द्वारा ज्ञान दो और कल्पना अर्थात अपने संपर्क द्वारा, संबंध द्वारा, चेहरे द्वारा ऐसी सेवा करो जो उसका भी प्रभाव साथ साथ सेवा में हो। एक समय में तीन सेवा इकट्ठी करो, क्योंकि अभी आत्माएं सेवा के लिए चाहती है कुछ फर्क हो, बदलना चाहिए। तो एक समय पर तीनों सेवा कर सकते हो, कर सकते हो। चेक करते हो कि जिस समय वाणी की सर्विस करते उस समय मनसा द्वारा और कल्पना अर्थात संपर्क संबंध द्वारा भी सेवा हो रही है, होती है साथ साथ। एक ही समय तीन सेवा, तो अभी अटेंशन प्लीज।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

at it.

Monster.

thing. Eat one.

Mansa Shakti Dwara Vibration.

0: उमंग उत्साह।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाबा सबको लगा रहा
2: दादा, सबको बिंदी का तिलक दे रहे हैं। सुंदर दृश्य आपने

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ऐसे मत वालों को मुबारक देते हैं कि हिम्मत आपकी मदद
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा को खुशी है कि हर बच्चा चाहे सिंधी है चाहे हिंदी है, लेकिन हर बच्चा खुश रहता है मेजॉरिटी, ये देख के बाबा बहुत खुश होता। खुशी कभी नहीं कमाना, बात होती है लेकिन बात हमारी खुशी क्यों ले जाए। खुशी हर एक ही अपनी चीज है, वो कभी नहीं जानी चाहिए। बातें आती है, वो भी पेपर आता है, तो जो बच्चे अच्छे पुरुषार्थी है वो पेपर में सदा पास होते, उनके लिए पेपर कोई बड़ी बात नहीं है। ही रेडी
2: ठीक है तो।
1: ऐसे रेडी रहने वाले की निशानी ये है कि उनके शिकिल पर सदा खुशी की लहर दिखाई देती। कितनी भी बातें हो जाए, क्योंकि डबल संबंध में रहते हैं, लौकिक में भी है अलौकिक में भी, लेकिन जो सदा खुश रहते हैं वो आगे से आगे कदम बढ़ाता रहते, और बाप उन बच्चों को देख सूखम में उनके ऊपर दिल का प्यार अवश्य होता है, जो उनको भी महसूस होता है बाबा का प्यार मेरे से। ऐसे दिल खुश बच्चे बहुत है और सदा ही खुश रहेंगे, जो नहीं भी है तो भी सदा खुश रहेंगे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Oh.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

मनन करने के लिए, सेवा करने के लिए, होम वर्क में रोज देते। अगर मनन करो see.

超

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Never.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हो जाएगा अच्छी अच्छी सुनाते। बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाएगा। लेकिन बाप दादा इस सज्जन

0: संपन्न करना है, पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता, व्यर्थ बोल
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: हंसी की ये बात है तो सभी कहते हैं कि पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं, और बाप दादा देख करके बाप को रहम भी आता है। पुरुषार्थ बहुत करते, कभी कभी मेहनत बहुत करते, और कहते क्या है क्या करे, मेरे संस्कार ऐसे। संस्कार के ऊपर ही कह के अपने को हल्का कर देते, लेकिन बाप ने आज देखा कि ये जो कहते हो आप कि मेरा संस्कार है, तो क्या आपका ये संस्कार है? संस्कार क्या है? और ओरिजिनल आपके संस्कार कौन से हैं? जिसको आज आप मेरा कहती हो वो मेरा है या रावण का है? किसका है? आपका है? कहते तो ऐसे ही हो ना कि मेरा संस्कार ऐसे कहते हो, तो आज से ये नहीं कहना मेरा संस्कार नहीं, यह हवा में किचरा आ गया और किया जाता है ना कभी, तो ये रावण की चीज आपके पास आ गई, उसको मेरा कैसे कहते हो? है मेरा है, है मेरा है, है नहीं है ना? तो अभी कभी नहीं कहना, जब मेरा शब्द बोलो तो याद करो मैं कौन और मेरा संस्कार।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सोचो आप विशेष आत्माओं की अनादि आदि पर्सनालिटी और रियलिटी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, फिर आओ नीचे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वो कसे भले नहीं करो।

Sleep.

आत्माओं के लिए मुक्ति

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: देखो बाप दादा, मैं चैरिटी शब्द कह रहा है, सर्व नहीं कह रहा है, मैं चैरिटी कह रहा है। दूसरी बात क्या देखी, क्योंकि कारण को निवारण करेंगे तब नव निर्माण होगा। दूसरा कारण ये दिखा कि अलबेला पन भिन्न भिन्न रूप में दिखा, कोई बहुत रायल रूप का भी अलबेला बनते। एक शब्द अलबेलेपन का कारण सब चलता है, क्योंकि साकार में तो हर एक के हर अरब को कोई देख नहीं सकते। साकार ब्रह्मा भी साकार में नहीं देख सके, लेकिन अब अव्यक्त रूप में अगर चाहे तो किसी के भी हर कर्म को देख सकते, जो गया हुआ है परमात्मा की हजार आंखें लाखों आंखें है, लाखों कान है, वो अभी निराकार और अव्यक्त ब्रह्मा साथ साथ देख सकती है, कितना भी कोई छिपाए, छिपाते भी रॉयल्टी से है, साधारण नहीं। तो अलबेलापन एक मोटा रूप है, एक महीन रूप है, शब्द दोनों में एक ही है, सब चलता है। देख लिया है क्या होता है, कुछ नहीं होता, अभी तो चल लो फिर देखा जाएगा। ये अलबेलेपन के संकल्प बाप दादा चाहे तो सभी को सुना भी सकते हैं। देखना आप लोग कहते हो ना, थोड़ी लाजपत रख दो, तो बाप दादा भी लाजपत रखते, लेकिन ये अलबेलापन पुरुषार्थ को दीवार नहीं बना सकता, पास विद ऑनर नहीं बना सकता। जैसे स्वयं सोचते हैं ना सब चलता है, तो रिजल्ट में भी चल जाएंगे, लेकिन उड़ेंगे नहीं। तो सुना क्या दो बातें देखी, परिवर्तन में अगर ये अलबेलापन है किसी भी रूप से है, हर एक के अलग अलग रूप, लेकिन उस समय मुस्कुराती है, कहती है देख लेंगे क्या होता है। तो बाप दादा भी कहते हैं देख लेना क्या होता है। गाना आज क्यों सुना रही है, क्यों चाहो नहीं चाहो, जबरदस्ती भी आपको बनाना तो है और आपको बनना तो पड़ेंगे ही। आज थोड़ा सख्त सुना दिए, क्यों आप लोग प्लान बना रहे हो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन कारण का निवारण नहीं होगा तो टेम्पररी हो जाएगा, फिर कोई बात आएंगे ना कहेंगे। बात ही ऐसी थी ना, कारण ही ऐसा था, मेरा हिसाब किताब ही ऐसा है, इसलिए बनना ही पड़ेगा। मंजूर है ना?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

अपने पन का एहसास, अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा साथ।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सबके आगे अपना अनुभव सुना। नास्तक से आस्तक कैसे बना, बड़ी सभा में अपना सुनावे, छोटे मोटे नहीं लेकिन ऐसा हो जिसका प्रभाव जनता पर पड़े। जैसे हर वर्ग की सेवा करते हो ना, तो ऐसे भी कोई तैयार करो। ऐसे ही कोई धर्म वाले को, अथॉरिटी को तैयार करो जो अपना अनुभव सुनावे कि वास्तव में जो परमात्मा का परिचय सही ब्रह्मा कुमारियां देती है, ब्रह्मा कुमार देते हैं, वो राइट कैसे उनके मुख से ये अथॉरिटी के बोलने के लिए। अगर एक पॉइंट रही हुई है गीता का, भगवान कौन, वो भी सिद्ध तो होगी ना। जब ये सिद्ध हो तब कहे भगवान आ गया।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जिस भी सेवा

0: Jeyceltél. A B. Szame. Szame bonnéken a tészi.
1: Never.

दूसरा बोलने तक नहीं, लेकिन संकल्प तक। ये कारण शब्द को निवारण में परिवर्तन करने चाहिए। आत्मभाव के कारणों को भी निवारण

çerçe trose. Açı takı. Kemal.

Shanti. Por ti. Dick. Sabi mejar ti a tuve. Ap mukti data. क्योंकि चिल्लाती है

शांति की पुकार। सुनने नहीं

Esse

आपके कानों में गूंजेगा। पहले अपने अंदर से इस शब्द से मुक्त होंगे तो दूसरों को भी मुक्त कर सके। Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज चारों ओर के सर्व समानदारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे, इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना बड़ा स्वमान है इसको जानते हो? स्वमान का नशा कितना बड़ा है ये

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सहज चमक।

0: Mann Gemause.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Or not.
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: हाथ उठा के करके दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। हाथ उठाते इसीलिए, वैसे तो बाप जानते हैं क्या रिजल्ट होती है, लेकिन उठाने से आपको ये हाथ उठाना भी मदद करेगा। इतने संगठन के बीच में हाथ उठाया ये कोई कपड़ा

ये सोचो कि परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। अच्छा,

0: सोचते हैं, हिम्मत रखते हैं, लेकिन उस हिम्मत को पानी देते रहो, बस प्रॉमिस किया बस छूट जाते। याद अपना हमेश याद रखो, कितनी सभा है, पाप तो है,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

क्या समझते हो व्यर्थ संकल्प का? जो हिम्मत रख बाप के आगे संकल्प में समय पहुंच जाता है।

विश्वास।

0: veste negra.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा सेवा में रिजल्ट अच्छी हो रही है, सेवा के लिए मेजॉरिटी को See?

todas las

Peace.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने पहले भी सुना है, अगर दिल में कोई पुराने शैतान

медицинская. Solid.

Sifan biyek des nariena. Api kapi swapan mebi. Orar eso.

son's gonna sabi que te una.

Sabine. मेरा नहीं कहना।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कुमार भी कम नहीं है। कुमार अभी सुकुमार बन गए हैं और कुमारों के बिना सिर

0: Charles Patau. Komárok képen a szintre Charles a te. Ne így Charles. Komár. Képesíste ég bohat a csíje. Komár. Csodrát szakalap kari. Practical me last. Yok sukumar. Ulta to karenge nahi, sulta hi karenge. Tum kumaro me. Dhrad sankalap ki gift hai. सुकुमारों का कुमार नहीं, सुकुमारों का क्रोध बड़े दे बराबर ने अभी पाप दादा की ये इशारा प्रैक्टिकल में नहीं लाए. सारे विश्व के कुमारों का क्रोध मधुबन में इकट्ठा हो और प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर यहाँ आवे. कुमार अपना जलवा दिखा सकते. कुमारों का ऐसा ग्रुप साथ ले जाओ. कोई कहाँ का, कोई कहाँ का, कोई कहाँ का, और डायरेक्टर ने निमंत्रण देवे सब देशों के. निमंत्रण देवे, डेट फिक्स करें. कुमारों में तो बाप दादा की बहुत बहुत बहुत शुभ उम्मीदें हैं और पूरन होनी है.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम. सत्यम शिवम सुंदरम.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

假装烦恼，जवाब की प्रकृति सूर्य की शक्ति सूर्य की किरणें अपना कार्य say

शांति से नहीं छुड़ा सकते, ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलो, सकाश फैलो, जैसे

sick.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेंटर तो सब सेफ है,
2: सब ठीक है, ब्राह्मण परिवार भी ठीक है।
1: फिर भी बॉम्बे बाप का बाप का परिवार है, लेकिन जो बाप ने कहा फुल स्टॉप और तपस्या, इसको जरूर बनाना। ये तो कुछ भी नहीं है, घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे, खिड़की नहीं खोल सकेंगे तो क्या करेंगे।
2: गुलाबा सेंटर में तो बाहर नहीं निकलते हैं अभी, वहाँ हमारी बहनें भी जो है वो बाहर नहीं निकलती।
1: इससे बहुत कुछ हो रहा है।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
3: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्यों करते हैं? सिर्फ सोचते हैं, बस बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिसक जाती है। बिंदु तो है लेकिन कौन सी
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: स्वाभाविक की सीट है।

Esqueci.

0: Master Sarvashaktiman, ki shakti nahi mane, ye ho nahi sakta. Seat par seat hona, iska abhyas sada karo. चेक करो चाहे कर्म योग में हो चाहे सेवा में हो चाहे अपने मनन मंथन में हो, लेकिन सीट पर सीट है सर्वशक्तिया हाजिर होती है।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आपके।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Skelly.

संस्कार के स्वरूप में देखो, चाहे

परिवर्तन कर सकते।

entrevistarme. ¿Se va qué? Festar que samantame. Yeah.

देवात्माओं के हिसाब से भी श्री

Subtle but safe.

0: सबसे सहज पुरुषार्थ होते हैं। सारा दिन दृष्टि वृत्ति बोल भावना सबसे
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सभी पूछते हैं आगे क्या करना है, बाप दादा का संकल्प है कि अभी ज्यादा में ज्यादा बने बनाई स्टेज पर चांस लो और उनको सहयोगी बनाओ और आप सकाश दो। दूसरों का भाग्य बनाओ, भाग्य बनाने का चांस दो उनको। भाग्य बनाने के लिए सिर्फ स्वयं आश कौन सी दो, एक तो रहम दिल बहुत बनो, कि ब्याह के बाप के साथी बनो, शक्तिशाली फिरती से वायुमंडल ऐसा बनाओ जो स्वयं आफर करे, ऐसे आफर चारों ओर आवे, हर जोन में आफर आवे, ये सुतई प्रसिद्ध हो जाएगा। अभी वो नौका भी सहयोगी सनई बनने का चांस दो, उनों को भी चांस दो क्योंकि बाप दादा ने देखा है कि सनई सहयोगी हर जोन में यथाशक्ति है, लेकिन उनको सेवा के साथी बनाओ, उनको भी उमंग उत्साह के पंख दो, है चारों ओर, क्योंकि बाप दादा चक्कर तो लगाते हैं ना, तो अपने बच्चों को भी देखते हैं और सनेही सहयोगी आत्माओं को भी देखते हैं। बाप दादा रही है, लेकिन चांस नहीं दिया है, प्रैक्टिकल चांस नहीं लिए, तो ये वर्ष तो वो भी आपको लेना देंगे कि आपको तो आपने बताया ही नहीं कि ऐसा भी कर सकते।

0: चांस देने वाले बनो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Ugh.

Carson.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

इकट्ठे हो जाए सुट्टे, लेकिन पूरा नहीं होगा ना तो भी क्रोध आते हैं। मानो आप जानते हो कि हमारा भी कॉन्फ्रेंस होती है, फंक्शन होती है, उसमें हमारा भी पार्ट होना चाहिए। आकर भी हम लोग को कब जान सकते, और आपकी इच्छा है आप इशारा भी करते हैं, लेकिन आप लोगों को चांस नहीं मिल रहा है। तो उस समय चिड़चिड़ापन आता है कि नहीं आता? चलो महाक्रोध नहीं करें, लेकिन जिसने ना की उनके प्रति व्यर्थ संकल्प चलेंगे चलेंगे ना, तो वो पवित्रता तो नहीं हुई ना। आप फर्क इसके लिए छुट्टी है, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदले नहीं कर। जब संकल्प इच्छा के रूप बदलता है तब चिड़चिड़ापन भी आता है। वाह, मुख से क्रोध भी होता है या तो हाथों भी जलता है, वो अम्मा क्रोध। लेकिन पिछड़ देना, that's

स्वागत रखने तो मैंने कहा तो होना ही चाहिए, ये नहीं सोच ऑफर बड़े करो ये राम नहीं, लेकिन

0: तो ये भी लगाव नहीं रखेंगे कि जरूर होना चाहिए, वो नहीं चाहिए नहीं। ठीक है, आप फर्क किया और आपके निस्वार्थ ऑफर जल्दी पहुंचेगी। स्वार्थ किया ऑफर या ईशान के वश ऑफर और क्रोध पैदा करे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सिक्किया बहुत नहीं दो कि मैं करूं, सिक्किया देने में एक दो को भी समोशा रहे, लेकिन कि मैं के साथ सिक्किया दो। मोरली सुनाने कोर्स
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

Oh, shit.

उसके रूप में

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज के स्मृति दिवस पर एक एक बच्चे को स्मृति चाहिए। इस दिन की तो सभी बच्चे इस स्मृति दिवस पर आज अपने में कोई न कोई विशेषता ध्यान में रख और अपने में धारण करे। विशेषता दिन में विशेषता धारण करे। जो भी अपने में कमी समझते हो उस कमी को आज के दिन समाप्त कर कोई न कोई उमंग उत्साह की धारणा का संकल्प करना। सोने के पहले ये संकल्प करके सोना और अमृत वेले उसी को दोहरा कर हमेशा के लिए अटेंशन दे।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जितना प्यार है ना उतना साथ में, प्यार भी चाहिए शक्ति भी चाहिए। अभी शक्ति को बढ़ो, वायुमंडल बनाओ। एक दो किस सहयोगी बन, हर एक अपने अपने स्थान पर रहते हैं, स्थान को शक्तिशाली बनाओ, साथियों को शक्तिशाली बनाओ। तो क्या करेंगे अभी, नवीनता करेंगे ना। जब मेरा बाबा कहते हैं तो मेरे जैसा बनना तो पड़ेगा ना। हर एक अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो, संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, अमृत वेले बाप दादा देखते हैं, संकल्प अच्छे करते हो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। लेकिन जब कर्म योगी बनते हो संबंध संपर्क में आते हो उसमें फर्क हो जाता। कर्म योगी की स्थिति उसमें अटेंशन ज्यादा जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ए ब्रको, सिर्फ कमेंट्री से योग नहीं कराओ, अनुभव कराओ। अनुभव पक्का बनाती है। एक ही समय पर हर सेंटर पर एक ही प्रोग्राम और हर एक सेंटर अनुभव क्या किया वो रिजल्ट लिखे। चाहे 3 दिन का प्रोग्राम कराओ, चाहे 1 दिन का कराओ, लेकिन इकट्ठा चारों और जैसे थर्ड संडे सभी जगह रखते हो ना, अभी अनुभव कराने का प्रोग्राम चारों और एक समय लक्ष्य एक, समय एक और चारों ओर देश वाले भी समझेंगे कि ये विश्व में पीस के

0: कुछ अनुभव किया तभी बने हो, तो ऐसे अनुभवी बनाओ। अभी अखंड सेवा करो, बहुत सेवा रही।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: देखना पीछे नहीं रहेंगे, हो जाएगा ये।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

que sento a rama, sentido a rama, tô sentindo capaz, trama me sacar, roupa me और सब मानते भी हैं कि मात्र शक्ति के बिना इस विश्व का कल्याण

0: नहीं धारण करता तो आप इतनी अंत में यहां पहुंच नहीं पाते क्यों? के वायुमंडल की ब्रांचिया इस विश्व क्रांति के कार्य को हल्का कर रही थी तो ब्रह्मा बाप का फरिश्ता बनना आप जल्द से जल्द बच्चों अभी फरिश्ते रूप में जो सेवा की फास्ट गति है वो देख रहे हो ना, देख रहे हो फास्ट गति हुई है या कम हुई है? फास्ट हुई है ना, तो फास्ट गति हुई तभी आप यहाँ पहुंचे हो, नहीं तो सोए हुए थे अच्छी तरह से।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी समय अनुसार तीवर पुरुषार्थी बनने की आवश्यकता। तीवर पुरुषार्थी बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ सेकंड में बिंदी लगाना। बच्चों का तो बेफिक्र बच्चा का रूप देख रहा है, अभी इसी रूप को
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो।
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: मन बुद्धि संस्कार तीनों के मालिक बन आर्डर करो स्वीट साइलेंस। Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं।
3: Trusty Bunjo, Jimmy Wadi Pa.

सोच नहीं मना।

0: na coisa, man. Vixes. Soneque anvote. Rotia. Roye. Babjanta roye. Lekin yaad nahi karte. Mehnat koi bhi.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Don't say.

पहुंच गई वरना साधारण प्लेन में आए हो, वासने के प्लेन में उड़ के पहुंच गए।

lebih sadaran senene. Now.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Buddy। ऐसे बड़ी दिल वाले हो कि छोटी दिल है, समाने की शक्ति है, समानो साखर में कितना किचरा डालते हैं, डालने वाले को बदले किचरा नहीं देता। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर, ये बच्चे हो, मास्टर हो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कभी रह जाए।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सिर्फ एक बात याद रखना, ऐसे नहीं हो कि सेवा और स्वोन्नति में बैलेंस में अंतर नहीं है। प्लान प्रैक्टिकल में करने के बाद ये नहीं कहना तो सर्विस में बिजी हो गए ना, इसीलिए स्वोन्नति में अंतर आ गया, ये नहीं कहना। दोनों का बैलेंस सदा रहना। क्यों? दूसरों की सेवा करो और स्व की सेवा नहीं, तो ये अच्छा नहीं। दोनों का बैलेंस रखना ही सफलता है। समझा?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सबने अपना अकाउंट रखा, जिन्होंने एक्यूरेट अपना अकाउंट रखा है, नियम परमान काम चलाओ नहीं, यथारत रूप से जैसा भी है, लेकिन अकाउंट अपना पूरा रखा है, सच्चा सच्चा अकाउंट चलाओ नहीं। वो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, जिन्होंने रखा है, लिखा है नहीं, रखा है, दोनों ने रखा है। अच्छा, पीछे वाले उठो, जिन्होंने रखा है वो उठो, खड़े हो जाओ, जिन्होंने रखा है आगे वाले भी खड़े हो, पहली लाइन बैठे रहो। हम ये अच्छा अच्छा यहाँ टीवी रखी है, अच्छा अच्छा टीचर्स ने नहीं रखा है, अभी सोच सोच के उठ रहे हैं। अच्छा, और ये पहली लाइन ने रखा है, हाथ उठाओ, पहली लाइन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, स्पष्ट हो ही जाता है, लेकिन जिन्होंने सच्चा सच्चा कईयों ने थोड़ा हिसाब से नहीं, जैसे एवरेज निकाला जाता है ना, ऐसे

sana mare. Os compadramos, mare. Ye extra lift. Bab dada ne apne taraf se di. To final paper me. Aapki ye marks jo hai wo jama. जिन्होंने नहीं रखा है कोई भी कारण से, है तो अलबेलापन और तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी कारण से अगर नहीं रखा है तो बाप दादा कहती है कि फिर भी

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा ने जमा क्या खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रही है। समय की समापति अचानक होनी है, ये नहीं सोचो मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा। उनका टीचर कौन, समय या स्वयं परम आत्मा? परम आत्मा से संपन्न नहीं बन सके और समय संपन्न बनेगा, इसको क्या कहेंगे? समय आपका मास्टर है या परमात्मा आपका शिक्षक है? तो ड्रामानुसार अगर समय आपको सिखाएगा या समय के आधार पर परिवर्तन होगा, तो बाप दादा जानते हैं कि प्रारब्ध भी समय पर मिलेंगे, क्योंकि समय टीचर है। समय आपका इंतजार कर रहा है, आप समय का इंतजार नहीं करो, वो रचना है। आप मास्टर रचता हो तो रचता का इंतजार रचना करे न कर, मास्टर रचता समय का इंतजार।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: वर्तमान समय बाप दादा दो बातों पर बार बार अटेंशन दिला रहे। एक जमा हुए खजाने में भी

0: ocha karanaarse karanae. ये है बेत किसे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Drama।

भारत वाले कभी मिस्पी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करते। आना ही है, क्या भी करे। देखो रशिया वाले भी देखो, पैसा कम है लेकिन आर्थिक रूप बहुत बड़ी है। तो विदेशों की हिम्मत है।

0: Double Vision Shoki. Come on, Pop Tata, this direction. Or, Vapa Chiva Kati.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: दृढ़ता उसको कहा जाता है, मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प न जाए, झुकना पड़े मरना पड़े जीते जी, अपने को मोड़ना पड़े सान करना पड़े सुनना पड़े लेकिन संकल्प नहीं जाए, इसको कहा जाता है दृढ़ता। कोई कितना भी हिलाए आपकी दृढ़ता को, दृढ़ता को ढीला नहीं करूं।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी

Yeah.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, आपके सत्कर्मों की राहों पे हम चलते जाएंगे, जब तक स्वर्णिम सवेरा आए, दीपक बन जलते जाएंगे, दीपक बन जलते जाएंगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, हम जानते हैं आज भी कर रही हो यही रमन, आपके स्नेह और पालना को शत शत नमन, शत शत नमन।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: संकल्प। सर्वशक्तिवान बनत।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा लगा है मधुबन।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Tati.

Dosta kişirdi. Kisi bir karki.

a circle.

Unleashed.

0: परिवर्तन कर। वायुमंडल परिवर्तन कर सकते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा ने देखा, पहले भी कहा है, योग सब लगाते हो, लेकिन अब आवश्यक सुना है।

उसके

परिवर्तन किया। समय अनुसार

0: कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है तो अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं हो अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना। अभी अभी देखो, बाप दादा ने होमवर्क दिया 10 मिनट, टोटल 24 वाड़ी, 10 मिनट का होमवर्क दिया, तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। तो सोचो, अगर 10 मिनट
1: समय
0: दस मिनट हो तो अच्छे, ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेंगी। इसीलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार। ठीक है, मुश्किल लगता है ना, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई अर्जा नहीं है। और बाप को सुनाया ये बहुत अच्छा की, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसीलिए बाप दादा की कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ा। ठीक है, स्पष्ट हुआ? क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने इसकी निशानी
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: साधन नहीं है और हमको तो वैराग्य है, तो कौन मानेगा? साधन हो और पहले साधन और अभी के साधनों में कितना अंतर? साधना चिप गई है और साधन प्रत्यक्ष हो गए। अच्छा है साधन यूज करो, पढ़े दिल से करो, क्योंकि साधन आपके लिए ही है, लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। बैलेंस पूरा होना चाहिए। जैसे दुनिया वालों को कहते हो कि कमल पुष्प समान बनो, तो साधन होते कमल पुष्प समान। साधन बुरे नहीं है, साधन तो आपका कर्म का योग का

0: शूज करते हुए अनोखी परफॉर्मिंग तैयारी साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति को मार्जन कर अभी आवश्यकता है विश्व में
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्वशक्तियों का वर्षा, इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: दादी कहती थी, मेरी ये अभी तक भी दिल है कि हर एक मधुबन वाला चाहे पुरुषार्थ में कोई भी कमी अभी रह गई है उसका तो पुरुषार्थ करना है, लेकिन मैं एक बात चाहती हूँ मधुबन वालों से। क्या चाहती हूँ? एक मधुबन वासी पाप समान बन जाए। वैसे तो सभी को बनना है, लेकिन मधुबन विशेष है। मधुबन वाले को दादी से प्यार था, ये दादी कहती थी, मुझे पता है। प्यार के रिटर्न में मैं यही चाहती हूँ कि जैसे मम्मा ने लक्ष्य रखा, पापा ने कहा, मम्मा ने किया, ये तो मधुबन वाले जानते ही है। ऐसे
0: शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: शिव के ऊपर अक के फूले चढ़ते तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे हो, तो ये क्रोध का अक का फूल देख रही है दादी।

0: हिम्मत कभी नहीं हार। अगर थोड़ा भी कम हुआ तो आगे के लिए हिम्मत रख के छोड़ नहीं देना, पढ़ते रहना। बाप दादा कंबाइंड है कहते हो ना, साथ है नहीं कहते हो, कंबाइंड। ऐसे समय पर अगर कुछ भी हो, बाप दादा कंबाइंड है, उसको सामने लाके फिर अर्पण कर दो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि सभी बच्चे नंबर वन हो। दी हुई चीज अमानत हो गई। हाथ उठाया अर्थात दिया तो अभी आपका नहीं हुआ, अमानत है। तो अगर संकल्प में भी आए तो समझना अमानत में क्या नत है, ये बुरा माना जाता है। दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती, क्योंकि मेरी नहीं।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज joke।

श्रेष्ठ प्रलंबित जमा का खाता दूसरा है सदा रहना और संतुष्ट।

Swarat. Seva Dwara. Punya Kakata. Aap sabhi bhi. Yeah.

Ah.

चाबी का नंबर

Isra.

Chamito Hernández.